प्ले कर ली। आई एम क्वीन, ये कौन सा सॉन्ग है मुझे समझ नहीं आया जी। सदीक अली चीना सेबुल्ला मतीउल्ला बंदीवान उमर हयात गल गुल गुलबर्राम और अब्दुल हादी फैजान यूसुफ आवान अब्दुलरहमान आरिफ आबाद से गुलाम होटल वाला हसैन को हसैन टिकट वाला महबूब शेख सलाम सलीम कटी तरफ असलम तवाया वालेकुम असलम सलीम कटी से नूर नू आज जोजी से पूछिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ब्रदर, थैंक यू सो मच। कम प्रोडक्ट इंत आबो दसान द पार खड़े कम कम प्रोडक्ट मुदड़े तो लासी जकचे दास्तास तो पारे प्रोग्राम सास रख कुलाद पारे सास रु मुस्कान द पारे रे नुबिया बिल्कुल जी रात बवाई खाम खबर आतवाई छ समुग दिस ना का स्मेडिक पाकिस्तान दो कम प्रोडक्ट दसान द पारन राहु परुन या बल और रसरावड़े रे अब इंतहाब मुदसान द पारे खड़े रे नु लाजिमी बरातवाई खाम खबर आतवाई او کرا تا مون ویلی کنا اوس پدنا گوی خپشما او زم بجنگ بیا سرا واچو ما ا ا

देना इलावा जमोंगा इज्जतमंदो जमोंगा प्रोडक्ट द फरीदुल्ला जनरल स्टोर एंड गारमेंट्स रफीउल्ला कराकरी एंड जनरल स्टोर दी सरा बिलाल मार्केट बनू रोड टांग के द खत्मी नबूवत चौक की जमोंगा टोल प्रोडक्ट अवेलेबल मुलाजिक का खेलो की जमा आवाज सुकवोरी नो मेन द गर्ल्स स्कूल तब खामा द हाजी लतीफुल्ला पकोर की जमुंग टोल प्रोडक्ट अवेलेबल दी डबरा के प द हाफिज शमसी सरा जेवस मार्केट की जमुंग टोल प्रोडक्ट अवेलेबल मीरली बाजार की लाची रहमान मार्केट द शाहजेब एंड मंसूर कॉस्मेटिक्स पनुम बानी दुकान द मंसूर बाई सरा जमुंग प्रोडक्ट अवेलेबल जमील खान गला मंडी एंड कॉस्मेटिक सेंटर जुबेर मरहूम मार्केट लंडीवा के द जमील भाई सरा जमुंग प्रोडक्ट अवेलेबल दी द दीन इलावा द जमील खान पकोर के हम प्रोडक्ट अवेलेबल चाइल्ड गिफ्ट सेंटर डुमेल बाजार सदफ भाई सरा जमुंग टूल प्रोडक्ट अवेलेबल दी दीन इलावा आमिर स्वीट एंड बेकर्स बका खेलो के द नसीम भाई सर हक नवाज ट्रेडर्स जानजेब गली बनो के द हाफिज सिफ सर हाफिज इदरीस कॉस्मेटिक सेंटर अब्दुल खालिक फकीरानो मार्केट मेन लकी बाजार दिन इलावा जमा इज्जतमंदो पड्डी आई खान के चिजमा आवाज सुकवावरी नो आगीता पशेख यूसफ अड़के जमुंगा टोल प्रोडक्ट बा अवेलेबल दी वाइखली और इस्तेमाल की जमा इज्जतमंदो इस्तेमाल सरब बिल्कुल तासुता फायदा की गी और बिल्कुल बती तासु मुतमईन ये जमा इज्जतमंदो

0: It's 4 o'clock.
1: It's 4 o'clock.
0: Hourly Time Check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4.
2: चाहतों के रंग अमन के संग अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क.
3: यू आर लिस्निंग रेडियो अमन नेटवर्क.
4: वी गॉट मोर हिट्स फॉर यू सो स्टे ट्यून्ड.
3: 88.4 FM.
0: वेलकम टू रेडियो अमन 88.4.

जी जनाब, आज आवाज की क्लैरिटी का मसला आप लोगों की तरफ तीनों स्टेशन के ऊपर होगा, क्योंकि आज जो है मेरा सेटअप का थोड़ा अनएक्सपेक्टेड जो है कुछ एरर आ गया, जिसकी वजह से मुझे जो है सिस्टम से हटकर जुगाड़ चलाना पड़ा। पाकिस्तानी तो जुगाड़ के माहिर है ना। तो आज के जो शो सुन रहे हैं जनाब, आप चाय ज्यादा पीजिएगा और मेरी तरफ तवज्जो कम कीजिएगा क्योंकि जनाब जो है आज आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम वॉइस क्वालिटी के अंदर, कोई शूशा इस तरह की आवाजें आ सकती हैं, क्योंकि प्रॉपर सिस्टम से आज मैं केसन स्टूडियो से ऑन एयर नहीं हूं, बल्कि जुगाड़ के साथ आप लोगों के साथ ऑन एयर हूं। तो गेम को चलाना था, मैंने कहा छुट्टी नहीं करते, अदरवाइज मेरा आखिरी लम्हे तक भी इरादा था कि आज लाइव शो नहीं करते हैं, ठीक है जनाब। लेकिन मैंने कहा नहीं, बहुत सारे लोग लाइव शो के इंतजार में बैठे होते, तो मैंने कहा चलो जी जितना कुछ हो सकता है उतना कुछ जो है हम चलाने की कोशिश करते हैं। एनीहाउ जनाब, थोड़ा सा आज लिवरेज देंगे, मुझे थोड़ी सी गुंजाइश देंगे, अगर आपको थोड़ा बहुत सीटियां वीटियां बजती आ रही है, आवाज का मसला है, तो थोड़ा सा गुजारा करेंगे। तो ये जो हमने साबन बनाया जनाब, अच्छा पहली बात तो ये है कि हमारे जितने भी सोप हैं ना, वो आम किस्म के केमिकल से बने हुए साबन नहीं है, जिस तरह लक्स, कैप्री, सेफ गार्ड, इस तरह की चीजें आपको मिलती हैं, ये केमिकलाइज सिंथेटिक केमिकल इनको सोप कहा जाता है, ये नेचुरल सोप नहीं होते हैं, ये हैंडक्राफ्टेड सोप नहीं होते हैं, ठीक है जनाब। हैंडक्राफ्टेड सोप जो है महंगा साबुन होता है, एज कम्पेयर जो बाजार में बिकने वाले साबुन होते हैं उनसे ये महंगा होता है, क्योंकि ये जो साबुन जिनके मैंने अभी आप लोगों के सामने नाम लिए हैं ना, ये सिर्फ हाथ धोने के लिए इस्तेमाल होते हैं, बॉडी को धोने के लिए इस्तेमाल होते हैं, चेहरे के लिए ये साबुन नहीं होते हैं बेसिकली, ठीक है जनाब। इनको फेस सोप बहुत कम कहा जाता है, बहुत कम लोग इनको इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ हाथ धोने के लिए, पाकीजगी के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो नेचुरल सोप होते हैं जनाब, जैसे कि हैंडक्राफ्टेड सोप की हम बात करते हैं, जैसे कि केसन के ये जितने भी सोप हैं, ये हैंडमेड सोप हैं, ये मशीन से नहीं बनते हैं, ठीक है जनाब, ये हाथ के बने हुए सोप हैं। उस दिन एक बंदा हमारे पास आया हुआ था फतेह मोड़ से, अपाहत जनरल स्टोर के नाम से कॉस्मेटिक स्टोर है जनाब, तो वो कुछ अर्से पहले जो है हमसे एक दर्जन जाफरानी साबुन ले गया, तो फिर जब आया तो इस दफा उसने कहा भाई दो दर्जन देना, तो लड़के ने उसको एक दर्जन दिया, तो जब सामान उसने देखा उसने कहा भाई मैंने आपको दो दर्जन जाफरानी साबुन बोला है, तो लड़के ने कहा सर इजाजत नहीं है, एक दर्जन से ज्यादा हम ये साबुन नहीं दे सकते। तो ऐसा ही है भाई, एक दर्जन से ज्यादा हम ये साबुन नहीं दे सकते, क्योंकि इसकी सेल इतनी है, इतनी जबरदस्त इसकी सेल है कि कार्टन तो बहुत दूर की बात है, हम नहीं दे सकते, हम एक दो

बना के दे देगा, लेकिन ये जो नेचुरल सोप होते हैं ना, ये मशीनरी का इसके अंदर कोई किरदार नहीं होता। ठीक है जनाब, आप YouTube से देख सकते हैं कि नेचुरल सोप कैसे बनाए जाते हैं, जाफरानी सोप कैसे बनता है, मिल्क वाला सोप कैसे बनता है, ठीक है जनाब, राइस वाला साबुन कैसे बनता है, उपटन का साबुन कैसे बनता है, ठीक है जनाब, कोजेक एसिड का कैसे बनता है, टी ट्री का कैसे बनता है, ये सारी चीजें आप यूट्यूब से देख सकते हैं। ठीक है जनाब, तो आपको वहां पर ये चीजें नजर आएंगी कि कैसे बनाई जाती है ये चीजें, साबुन कैसे बनते हैं। तो ये जो 6-7 किस्म के हमारे साबुन है भाई, बहुत ही क्लासिकल, और ये आपके ऊपर रिजल्ट छोड़ने वाले हैं। अब आप पूछेंगे कि भाई इतने सारे साबुन एक ही बना लेते, भाई डिफरेंट किस्म की चीजें डिफरेंट लोगों को सूट करती हैं। अब मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, अभी बीच में हमारा एक साबुन शार्ट है, उसका नाम है उपटन। उपटन साबुन पिछले 2 महीने से जो है, जब से हमने जाफरानी लॉन्च किया है ना, तो उपटन को हमने उसकी प्रोडक्शन रोक दी है। उसकी वजह यह है कि जो चीजें उपटन के अंदर मौजूद है ना, उससे ज्यादा ताकतवर चीजें हमने जाफरानी सोप के अंदर ऐड कर दी है, जैसे कि हल्दी, जैसे कि बहुत आला किस्म का जाफरान, ठीक है जनाब, खालिस जाफरान जिसको बोलते हैं, और बहुत ही खालिस किस्म का संदल। ये 3 चीजें ऑलरेडी हमने जाफरानी सोप के अंदर ऐड कर दी है, सो आपको अब उपटन सोप की जरूरत नहीं है। ठीक है जनाब, अब हम ये सोच रहे हैं कि नहीं है, लेकिन लोगों ने हमारा सर खाया हुआ है, यकीन कीजिए सर खा हुआ है, लिटरली हमें तंग किया हुआ है कि भाई वो उपटन क्यों नहीं आ रहा, उपटन क्यों नहीं आ रहा, उपटन साबुन क्यों नहीं आ रहा। हम कहते हैं भाई अब आप जाफरानी सोप इस्तेमाल करें, आपको वैसे ही रिजल्ट मिलने हैं, लेकिन उनका माइंड है नहीं भी वो उपटन वाला तो बहुत मजेदार था, वो तो हम तो यूज कर रहे हैं, उससे चेहरा बहुत प्यारा हो जाता है। एनी हो, कोशिश करें जितना आप लोगों ने हमें तंग किया हुआ है ना, तो हम मजबूर होकर फिर से हम उसे जो है पेश कर देंगे आप लोगों के लिए। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि जितने भी उपटन के यूजर हैं, काइंडली वो जाफरानी सोप के ऊपर आ जाए। ये बहुत ही प्यारा साबुन है भाई, इतना प्यारा है कि भाई हम इसकी इतनी सेल है कि हम 1 दर्जन से ज्यादा दुकानदार को दे भी नहीं सकते। तो वो भाई कह रहे थे भाई मुझे 2 दर्जन चाहिए, हमने कहा भाई नहीं मिल सकते, हमें पीछे से हमारी प्रोडक्शन इतनी है, ये हजारों की तादाद में डेली बन नहीं सकते, ये 500 की तादाद में डेली बन नहीं सकते। ठीक है जनाब, तो ये हाथ से बनने वाली चीज है, फिर उसके बाद इसके जमने में टाइम लगता है। ठीक है जनाब, और जमने में जब टाइम लगता है तो 1 दिन की कैपेसिटी इतनी नहीं होती कि हम इतनी ज्यादा तादाद में इसको बना सकें जो नेचुरल वे पर बनाना होता है। ऐसे तो आप हजारों 1 घंटे के अंदर 500 साबुन भी बना लेंगे। सो ये जो साबुन है भाई, ये कितना अहम है। मैं ये कहता हूँ कि भाई जो लोग कहते हैं कि भाई आपने, मैं स्पेशल टांक वालों से मुखातिब हूँ भाई, चाय मेरी ठंडी हो रही है। हाँ जनाब, एक घोट इसका भी, फिर आपके साथ बातें भी। तो

जी जनाब, ये जो हमारा साबन है ज़ाफ़रानी साबन, ये मैं आज आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो इससे पहले आप लोगों को मैंने नहीं बताई। टांक वालों के लिए तो वाकई एक नई चीज है, क्योंकि टांक वालों ने आज तक नेचुरल सोप मेरे ख्याल में यूज नहीं किए होंगे। ठीक है जनाब, आपके पास जितनी भी कंपनी है सिंथेटिक, कोई भी मेरे ख्याल में नेचुरल सोप किसी का भी नहीं है जो आप यूज कर रहे होंगे। तो टांक वालों के लिए तो बहुत जरूरी है कि हमारे किसी ना किसी साबन के ऊपर आ जाए आप। ठीक है जनाब, जो आपका दिल करे चाहे, तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि ज़ाफ़रानी या मिल्की सोप, इन दोनों में से किसी को ट्राई कीजिए आप। ठीक है जनाब, इन दोनों में से किसी एक साबन को आप ट्राई कीजिए, ज़ाफ़रानी या मिल्की सोप, तो इंशाल्लाह जो है आपको बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट मिलने हैं। क्या रिजल्ट मिलेंगे इस साबन से? पहली बात तो ये है कि हमारे जितने भी साबन हैं, जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके स्किन के ऊपर खुश्की नहीं आएगी। पहली बात तो ये है, क्योंकि ये कोकोनट ऑयल प्लस ग्लिसरीन इनकी बेस होती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन बिल्कुल भी खराब नहीं होती। और आपकी स्किन तब खराब होती है जब कोई केमिकल वाला साबन आपकी स्किन को बिल्कुल खुश्क कर दे, तब आपकी स्किन के खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर कोई आपने साबन इस्तेमाल किया है और उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि भाई आपका चेहरा तो पाउडर पाउडर हो गया है, आप ग्लिसरीन ढूंढ रहे हैं या कोई और चीज ढूंढ रहे हैं, तो भाई इस साबन से जान छुड़वा लें आप। आपने बहुत ही खतरनाक किस्म का साबन चुना हुआ है जो आपके सारे ऑयल को निचोड़ लेता है, आपके चेहरे को खराब कर देगा। ये केसन के जितने भी साबन है जनाब, पहली बात तो ये है मॉइस्चराइजिंग, क्योंकि कोकोनट ऑयल और ग्लिसरीन इनकी बेस होती है। ठीक है जनाब, तो दूसरी बात जो है, अब क्यों ज़ाफ़रानी साबन की कौन सी बात जो पहले आपको नहीं बताई, अब मैं बताने जा रहा हूँ, तो वो ये है कि जनाब इस साबन को ना सिर्फ आप चेहरा धोने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि बाल धोने के लिए भी आप ज़ाफ़रानी साबन को इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेशली जब आपके

बालों में बहुत ज्यादा खुश्की है, जबकि आपके बालों में बहुत ज्यादा खुश्की है, ठीक है जनाब, या आपके सर के अंदर खारिश होती है बहुत ज्यादा, ठीक है जनाब, बहुत ज्यादा खुश्की है, बहुत ज्यादा खारिश आपको होती है, आपके बाल जड़ों से बहुत ज्यादा कमजोर हैं, तो इस सूरत हाल में जनाब आप हमारा ये जाफरानी साबुन, ये बेसिकली फेस के लिए है, लेकिन इसके जो अज्जा हैं इसके अंदर वो आपके बालों की चमकदार बनाने में, बालों को नर्म मुलायम बनाने में, बालों की खुश्की खत्म करने में, बालों को जड़ों से मजबूत बनाने में इनका बहुत बड़ा रोल है। जो तीन मेन अज्जा हमने ऐड किए हैं हमारे इस साबुन के अंदर, यानी कि इसके अंदर खालिस ज़ाफ़रान है, खालिस संदल है और खालिस इसके अंदर हल्दी है। ये चीजें जो है ना, आप जब हमारा ये साबुन खरीदेंगे ना, रेड कलर का ये साबुन है, क्या कलर है इसका, रेड कलर का ये साबुन है, जिस तरह ऑयल का रेड कलर है ना, उसी तरीके से ये रेड कलर का, क्योंकि जब साबुन तो बेसिकली वाइट होता है, उसकी जो बेस होती है ना वो वाइट होती है बिल्कुल, लेकिन जैसे उसके अंदर ज़ाफ़रान जाता है ना, तो ज़ाफ़रान रेड कलर होता है तो वो साबुन को रेड कर देता है, ठीक है जना। तो ये उसके अंदर जो है आपको उसी साबुन के अंदर ना ज़ाफ़रान के ज़रात और संदल, संदल बेसिकली लकड़ी है ना, उसका पाउडर होता है, लेकिन उसका असर जो होता है वो साबुन के अंदर जाते बेसिकली तो वो ज़रात होते हैं लकड़ी के, ठीक है ना, उनको पीस के ऐड किया जाता है। तो ये आपको विजिबल होंगी चीज़ें भाई, ये कहने वाली बात नहीं है, हम जो कहते हैं ना वो चीज़ें आपको हमारे प्रोडक्ट में नज़र भी आती हैं। तो ये जो ज़ाफ़रानी साबुन है ना भाई, ये जब आप लेंगे तो भाई ये सारी चीज़ें ना, ज़ाफ़रान, संदल, हल्दी तो नज़र नहीं आएगी, लेकिन हल्दी तो मिक्स हो जाती है उसके अंदर, लेकिन दो चीज़ें आपको बिल्कुल नज़र आएंगी, यानी कि ज़ाफ़रान भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं नज़र आएगा और आपको संदल के जो ज़रात है ना वो भी नज़र आएंगे। ये बहुत ही प्यारा हमारा साबुन है और इस साबुन को इस्तेमाल करते हुए ना एक वाई बात ही है, एक ख्याल आता है, एक फीलिंग आती है, अमीर अमीर सा बंदा लगता है इस साबुन के बाद, क्योंकि इसकी खुशबू यार अमीरों वाली है, इसकी जो खुशबू है ना वो ज़ाफ़रान की है, और जब बंदा चेहरा धोता है तो बंदा कहता है यार किसी बादशाह के महल में आ गए हो या बादशाह के महल से गुजर रहे हो, ऐसे ही वाइब आती है आपको, ऐसी ही फीलिंग आती है, और बंदा कुछ देर के लिए तो अपने आप को बड़े अमीर अमीर तरीन समझने लगता है कि भाई क्या चीज मैंने इस्तेमाल कर लिया। सो बहुत ही आउट क्लास हमारा ये साबुन है भाई, बहुत ही आउट क्लास साबुन है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि भाई कोई कंपनियां रिस्ट्रिक्शन रखती हैं सेल के ऊपर, हमारी तरफ से रिस्ट्रिक्शन है कि हम एक दर्जन से ज्यादा नहीं देते हैं, क्योंकि इसकी डिमांड इतनी ज्यादा है और इसके फायदे इतने ज्यादा हैं। मैं कहता हूं कि भाई जो बड़ी उम्र के लोग हैं, ठीक है जनाब, जिनकी उम्र बड़ी है और वो चाहते हैं कि प्यारे रहें, लेकिन भाई शर्म आती है, घर में क्रीम कौन लगाए, ठीक है जनाब, सीरम कौन लगाए, लोग कहेंगे तुम्हारी उम्र तो इतनी हो गई है, लेकिन क्या है, इंसान आखिरी दम तक जो है वो तारीफ सुनना चाहता है। तो भाई अगर आप भी हमेशा अपने चेहरे को खिला खिला सा, निखरा निखरा सा देखना चाहते हैं, दाग धब्बों का खात्मा चाहते हैं, ठीक है जनाब, रंगत को जो है यकसा चाहते हैं और रंगत को सफेद चाहते हैं, चेहरे को प्यारा खिला हुआ, और ये जो गर्मी के दिन है भाई, इनके लिए ये आइडियल है।

0: जी जनाब, तो ये साबन नेचुरल सोप जितने भी होते हैं ना, बेसिकली जो साबन या फेस वॉश का तरीकाकार होता है वो ये होता है कि 30 सेकंड के अंदर आप समाप्त कर लें हर चीज को, यानी कि साबन झाग झाग बनाने के बाद धो लें। लेकिन ये जो नेचुरल एक्सट्रैक्ट से बने हुए साबन होते हैं या फेस वॉश होते हैं या साबन होते हैं, इनको आप टाइम दिया करें। यानी कि अगर आप ये जाफरानी सोप, जी जनाब, जाफरानी सोप अगर आप, आपका माइंड बन गया है कि भाई ये तो मैजिकल है, ये तो सनटैन को खत्म करता है, ये गर्मी के जो दिन है, आप यकीन कीजिए कि सबसे ज्यादा स्किन आपकी जो खराब हो रही है ना, जो आप आधे घंटे के लिए रोड के ऊपर जाते हैं, 15 मिनट के लिए रोड के ऊपर जाते हैं, या आप 10 मिनट के लिए किचन में जाती हैं रोटियां बनाने के लिए, ये हीट ही आपकी स्किन को काला कर रही है, ये हीट ही आपकी स्किन को खराब कर रही है। और इस वक्त आपको क्या चाहिए, गर्मी में क्या चाहिए होता है, हमेशा बंदा ठंडे पानी की तलब कर रहा होता है। अब आपकी स्किन आपको बताती नहीं है, आपका जिस्म आपको बता देता है कि भाई आपको तलब है पानी की, और बार बार बार आप पानी पीते हैं, लेकिन स्किन आपको नहीं बता सकती कि भाई उसको भी पानी, उसको भी ठंडी चीज चाहिए। ठीक है जनाब, इस गर्मी के अंदर जिस तरह आपको पानी चाहिए ना ठंडा, उसी तरीके से आपकी स्किन को भी सुकून में आने के लिए ठंडी चीज की जरूरत है। तो क्या इससे ठंडी और कोई चीज नहीं है संदल से? संदल का क्या कहते हैं, शरबत कितना ज्यादा पिया जाता है गर्मी के अंदर, हर जगह आपको बेचने वाले मिलते हैं, सारा साल नहीं बिकता लेकिन गर्मियों में बिकता है। क्या है? उसकी तासीर ठंडी है। ठीक है जनाब, जैसे आप पीते हैं ठंडक अंदर तक चली जाती है, यही ठंडक आप महसूस कर सकते हैं अपने चेहरे के ऊपर। डेली जाफरानी साबन का इस्तेमाल आप यकीन कीजिए आपकी स्किन को इतना प्यारा कर सकता है कि शायद कोई क्रीम भी आपको इतना रिजल्ट गर्मियों में ना दे जितना जाफरानी साबन 2 दफा इस्तेमाल करने से। सुबह और शाम में अगर आप इस्तेमाल करेंगे केसन का जाफरानी साबन तो ये अच्छा, लेकिन इसके इस्तेमाल का तरीका कार ये है कि जब आप चेहरे के ऊपर झाग बना लें या बालों के ऊपर आप झाग बना लें तो 1 मिनट के लिए बैठ जाए, 1 मिनट आप इन अज्जा को दें कि ये आपकी स्किन के अंदर जज्ब हो सके, आपकी स्किन के ऊपर थोड़ी देर ठहरें। ठीक है जनाब, चाहे बालों के ऊपर यूज कर रहे हैं आप सोप को, ठीक है जनाब, सोप का लोग सुनते हो डर जाते हैं, वो जो सिंथेटिक केमिकल साबन होते हैं ना वो बालों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होते हैं, ये इनके अंदर कोई केमिकल नहीं है, कोकोनट ऑयल से बने हुए। आप यकीन कीजिए कि आप एक दफा अपने बालों को जाफरानी साबन से धोएं तो सही, एक दफा सिर्फ टेस्ट कर लें, आपके गिरते हुए बाल भी रुक जाएंगे, आपके बालों के अंदर एक चमक होगी, एक सिल्कीपन आपके बालों के अंदर आ जाएगा और आपको मजा आ जाएगा कि यार ये तो कमाल की चीज बनाई है केसन, है जनाब, एक साबन जो चेहरे को इतना प्यारा रखता है, जो बालों को भी इतना प्यारा रखता है, क्योंकि इसकी जो अज्जा है जाफरान संदल और हल्दी वो बहुत ही खालिस प्रीमियम किस्म की इंग्रेडिएंट्स को हमने इसके अंदर ऐड किया हुआ है जनाब, और इसके बहुत ही प्यारे और मेरा फेवरेट साबन है केसन। अल्लाह को जान देनी है, फेस वॉशेस के बाद अगर मैं कोई साबन इस्तेमाल करता हूँ और जो मैं कहता हूँ उनकी फीलिंग आती है अमीरों वाली, तो वो यही साबन है जनाब, मजा आ जाता है इस साबन को इस्तेमाल करने के बाद, मेरी पर्सनल यूज में ये रहता है। ठीक है जनाब, और बहुत ही प्यारी चीज है और सुकून सा चेहरे के ऊपर आ जाता है, एक ठंडक सा नेचुरल एहसास आपको हो जाता है। तो भाई गर्मियों में आपका ये हॉट फेवरेट साबन होना चाहिए भाई, जिनको अपनी स्किन से प्यार है, क्योंकि आपकी स्किन को कोई ठंडी चीज चाहिए। ये जो आपकी स्किन झुलस रही है, ठीक है, अब आप वर्किंग वुमेन है, आप दफ्तर जाते हैं, स्कूल कॉलेज जाते हैं, बाहर जाते हैं, अगर आपकी स्किन का दीदार सूरज ने कर लिया है तो आपके ऊपर फर्ज हो गया है जाफरानी साबन को इस्तेमाल करना।
1: याद रखना अपने ही नजरां फेर लेंदे ने, सोच सोच के

0: जी जनाब, आप लोग भी हमारे साथ आ रहे हैं इस वक्त और आप लोगों की कॉल्स भी लेने लगे हैं इस वक्त। और फर्स्ट कॉलर हैं जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम खलील भाई।
0: जनाब शाहजहां चिश्ती साहब आज हमारे साथ आ चुके हैं। शाहजहां चिश्ती भाई, आपके ऊपर तो बहुत सारे जुर्माने हैं, पता हो आपको?
1: जुर्माने बिल्कुल हैं,
0: अच्छा जी मौसम
1: सुन सका है और न कॉल की है।
0: अच्छा मौसम कैसा? अच्छा आपकी तरफ आवाज ठीक आ रही है या कोई मसला है आज?
1: आवाज तो सही आ रही थी, कुछ देर के लिए बिल्कुल काट गई, अभी फिर आ रही है।
0: अच्छा अभी फिर आ रही है आपकी तरफ आवाज, ठीक है। अच्छा चलो,
1: मौसम बादल बने हुए हैं, मौसम आज नजारा खुशगवार है।
0: अच्छा खुशगवार है। अच्छा जी शाहजहां भाई, आप तो माशाल्लाह केसन के बहुत सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, और ये जो हमारा चहिता सा साबन है जिसको हम कहते हैं जाफरानी साबन, आप इसके बारे में जानते हैं कुछ या अभी नहीं जाना आपने?
1: जाफरानी साबन के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, जितनी इसकी तारीफ की जाए कम है, और इसके बाद की रिजल्ट है, और रिजल्ट इतने जल्दी है जाने के बाद फौरन रिजल्ट मिलता है।
0: फौरन यानी कि
1: इसके लिए एक दो दिन या हफ्ता इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह मुंह धोएंगे खास चेहरे मुंह पर और चेहरा देखेंगे शीशे के आगे, आपको खुद बताएगा कि कुछ ना कुछ आपने इस्तेमाल
0: किया। यानी कि
1: और बाहर निकलेंगे तो आपसे जरूर लोग सवाल पूछेंगे कि आपने क्या इस्तेमाल किया, क्या लगाया है।
0: अरे वाह जी वाह, क्या कहने। यानी कि आप कहते हैं कि कोई इंतजार की जरूरत, इसके रिजल्ट के लिए इंतजार की जरूरत नहीं अभी,
1: बिल्कुल फौरी रिजल्ट है, फौरी
0: फौरी।
1: और ना इसका कोई नुकसान है ना कोई इसके केमिकल है,
0: और खुशबू भी मजार है। अमीर अमीर बंदा लगता है ना इसको मुंह धोकर,
1: बिल्कुल अमीर। इसके जितने भी प्रोडक्ट हैं जी, खुशबू बहुत अच्छी है और नुकसान तो बिल्कुल, अगर फायदा किसी को ना भी देना तो नुकसान नहीं देते।
0: पहले बात हो कि फायदा भी देंगे ना सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे
1: तो देते हैं। अगर ऐसा है कोई कहता है कि मुझे नहीं दिया तो उससे नुकसान भी नहीं देंगे।
0: नुकसान भी नहीं देंगे तो आप भी माशाल्लाह तायद कर रहे हैं कि भाई ये जो साबुन कंपनी ने बनाया है ना अखीर है भाई।
1: आप कह रहे थे दो साबुन है उन पे आ जाएगा मिल्की और जाफरानी, तो मैं कहता हूँ मिल्की से भी जाफरानी नंबर वन है।
0: जाफरानी नंबर वन है बिल्कुल। जाफरान के अंदर तो तीन चीजें हैं और मिल्की के अंदर दूध है, तो ये तीन चीजें तो फिर अपना कमा। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि गर्मी के अंदर तो जाफरानी बहुत जरूरी, जाफरानी साबुन जो है वो बहुत ही जरूरी है, आपकी स्किन को बेहतर रखता है। जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत अरसे बाद हमें ज्वाइन किया।
1: सारे
0: जनाब सारे सुनने वालों को सलाम हो गया। आप लोग हमें कॉल कर रहे हैं जनाब 03444-9336-3366-0343-936-933-66, ठीक है जनाब, इस नंबर के ऊपर आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं। और एक हमारा नंबर जो है वो व्हाट्सएप सॉरी जोंग का भी है, तो उसके ऊपर भी आप लोग कॉल कर सकते हैं, ठीक है जी। आज पता नहीं मेरी आवाज कहाँ का सही जा रही है नहीं जा रही, ग्लोबल एफएम 91 के ऊपर इमरान भाई क्या सही जा रहा है सब कुछ, और वहां से टांग से और पहाड़पुर से उम्मीद है कि आवाज लोग मेरी सुन पा रहे होंगे। सो जनाब केसन की ये जो प्रोडक्ट है जिसको हम कहते हैं जाफरानी साबुन, एक अमेजिंग प्रोडक्ट हमने बनाई हुई है, और इसके फायदे आपको मैं तो बता रहा हूँ, लेकिन जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता चलेगा। ये आम साबुन नहीं है भाई, पहली बात तो ये है, ये जो आम साबुन आपको ब्यूटी सोप मिलते हैं ना, ये उस तरह का साबुन नहीं है, ठीक है जनाब। इसके अंदर एक्टिव्स मौजूद हैं, एक्टिव्स, ठीक है ना, जिन्होंने आपकी स्किन के ऊपर जाके काम करना होता है, जैसे कि जाफरान है, जैसे कि संदल है, जैसे कि हल्दी है, ठीक है जनाब, या फिर इसके अंदर कोकोनट ऑयल है, या फिर इसके अंदर विटामिन ई है, या फिर इसके अंदर ग्लिसरीन है, वो सारी चीजें जो आपकी स्किन को हेल्दी रखती हैं, ठीक है जनाब, आपकी स्किन तवाना नजर आती है। मैं ये कहता हूँ कि जिस भी मेरी बहन जिस भी भाई के इस्तेमाल में जाफरानी साबुन होगा वो कभी शिकायत नहीं करेगा कि उसके चेहरे के ऊपर दाग धब्बे आ गए हैं, उसके चेहरे के ऊपर दाने आ गए हैं। अच्छा दानों के लिए ये बहुत ज़बरदस्त है। ये परसों आपके टांग से एक हमारी फीमेल है, उन्होंने लिसनर हैं, तो उन्होंने प्रोडक्ट खरीदे और हमें पिक्चर्स भेजी, और साथ में कहा कि भाई मुझे गो पिम्पल फेस वाश भी चाहिए था, लेकिन मुझे फ्री में ना ये जाफरानी साबुन मिल गया है, तो मुझे पिंपल्स का इशू है, ऑयल का इशू है, तो मैंने उनको कहा कि आप फिलहाल गो पिंपल ना लें, क्योंकि ये जो साबुन है ना ये भी एंटी एक्नी, इसके अंदर फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि इसके अंदर हल्दी को शामिल किया गया है, वो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ उसकी हैं। तो उम्मीद है कि भाई ज़रूर वो इस्तेमाल कर रही होंगी और उनको ज़बरदस्त किस्म के जनाब जो है रिजल्ट मिल रहे होंगे हमारी, हमारा ये जो साबन है केसन जाफरानी साबन। एक और कॉलर है जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू, क्या हाल है खलील भाई?
0: जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जनाब, आवाज सही आनी पे है तो सही जमराज साहब
2: बिल्कुल कले आराम चाहिए, कोई ना कटिंगी पी है ना कोई शिकायत है ना कच्चा, बिल्कुल कले आराम चाहिए।
0: अच्छी गाल है सिंह, कले आराम पी तो बहुत अच्छी गाल है। पता नहीं चिश्ती साहब के पास क्यों आवाज करती पई है, उन्हें अपनी रेडो का मसला हो सी कोई लगता ही में
2: हल्दी

0: It's 5 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: चाहतों के रंग अमन के संग अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क
0: यू आर लिस्निंग रेडियो अमन नेटवर्क
2: वी गॉट मोर हिट्स फॉर यू सो स्टे ट्यून्ड
0: 88.4 एफएम।
3: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू। आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाए, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजायत फराहम करें, जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है। सिर्फ चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद महसूस करें मजबूत, घने और सेहतमंद बाल। अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है। तो पता याद रखिए, हमजा जनरल स्टोर, न्यू बनोसी होटल, टांग सिटी। मोबाइल नंबर 0344-93-63-780। व्हाट्सएप नंबर 0342-26-48-435।
0: Welcome to Radio Aman 88.4.

0: वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वो ही कोई रास्ता निकाल सकता है। वो जो कुन फयकून का मालिक है एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।
1: की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की नशरियात। हमारे साथ रहिए।
2: कांपता है दिल तेरा अंदेशाए तूफान से क्या, ना खुदा तू बहर तू किश्ती भी तू साहिल भी तू। देख आकर कूचाए चाके गिरेबां में कभी, कैस तू लैला भी तू सहरा भी तू महमिल भी तू।

दिल से जो निकलती है, दिलों तक जो जाती है, मालूमात को जगाती है, दुनिया का हाल बताती है। ये वो आवाज है जो आपके शहर में आपको अपनों से मिलाती है। ये आवाज है जो अमन की है। ये वो पैगाम है जो अमन है। रेडियो अमन 88.4 अमन का पैगाम।

अस्सलाम वालेकुम भाई, वेलकम टू दी सरप्राइज शो भाई। वो सुबह आप कितने ना एंड भाई मेरा गिफ्ट खीन वकार को है एंड सब लिसनर को सलाम एंड स्पेशल सलाम फॉर यू एट्स मिजुआ मेसू जो मिसू जमा खुर खुश आला शे ओ जितर खलोड नशे ए तो कले टांग दे कसम चित वेबिया इमिश ई सम रंगीन विशाम ए तो सर अमिश ईद खन रो कवि ए तो यकीन नशे हो कसम दे हकीकत दरते याईशा ओके शाम ಇನ್ಶಾಲ್ಲಾ ಜೋತ್ ಖಾನ್ ಕಿಶಾ ಡೇರ್ ಜೋತ್ ಮನ್ನ ಖುಷಾಲ್ ಜಮಾ ಹೋರ್ ಬರ್ಡರ್.